वैरी मीत च फर्क न कोई, हरख सोग दोए सम कर जाने। तेरे तोतले बोल प्यारे, हर एक नू पे देन सहारे।

0: जिन्ने टुकड़े होने दिल देने, हर टुकड़े ते तेरा ना होने। जिन्ने टुकड़े होने दिल देने, हर टुकड़े ते तेरा ना होने।
1: वाह जी,
0: सानू जिंदगी धोखा दे चली, हुण मौत नूं ही अजमावांगे, जे ओ भी बेवफा निकली, फिर दस किधर नूं जावांगे।
1: वाह।

सफर आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कह

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

लगती सही, कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना। कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना।

काम आना किसी के है एक बंदगी, एक बार ही मिलती है ये जिंदगी। काम आना किसी के है एक बंदगी, रोने वालों को जो भी हंसा था रे, रोने वालों को जो भी हंसाता रहे, असली है।

जैसे जल और पवन, ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने,

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

मैं तेरा पारदानी पानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। आ इक दूजे च समाइए नी आपां दोवें हाणो हाणी।

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा तेरे रोने च रोआ।

मैं किन्ना तेनू चाया, तेरे विचों रब पाया, कासे जोगा नहीं ए रहा, मैं बड़ा मन समझाया, मंजिल सारे कर लेनी एक दिन आपां दोवां।

0: बिल्कुल अनहेल्दी है,
1: जी
0: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों के बच्चे की भैन भरावां च नहीं होना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: ठीक है। जैलसी डिवेलप होती है ये नाल,
1: जी जी
0: ठीक
1: बिल्कुल
0: है। कई बार वो तुहाडा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड होंदा है,
1: जी
0: बार बार उसकी एग्जाम्पल तुहानू दित्ती है, नहीं तुहानू उस तों चिढ़ाउण लग जाती है
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल
0: जदों देखो
1: बिल्कुल
0: ये इदां करदा तां मेरे नाल इदां हुंदी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तुसीं
1: बिल्कुल
0: उस
1: ठीक
0: दियां
1: है।
0: अचीवमेंट्स ते खुश नहीं हुंदे,
1: बिल्कुल
0: तुसीं जैलस होना सीख जांदे हो।
1: वो एक तरह की गिरावट आनी शुरू हो,
0: हाँ
1: नेगेटिविटी जी
0: जी
1: है
0: हाँ
1: उनपे,
0: जी,
1: लेकिन ये बहुत ही व्यापक है।
0: बहुत व्यापक है, क्योंकि रीस करन दी आदत है सानू,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: असि वही चीज अगे इनकलकेट करते हैं
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: बच्चियां नू। शुरू शुरू दे विच सारियां नू प्रॉब्लम होंदी है जदों उन्हां नू किसे नाल कंपेयर किया जाता है। शुरू
1: बिल्कुल
0: शुरू दे विच ओह कहिंदे वी है कि साडे नाल इदां ना करो,
1: जी
0: पर
1: जी
0: क्योंकि पेरेंट्स नहीं हटदे, क्योंकि
1: बार
0: उन्हां नू डराया धमकाया जाता है और इस
1: जी
0: नू
1: जी
0: डिसोबीडियंस मन्निया जाता है,
1: जी
0: बच्चियां
1: जी
0: दी हौली हौली फाइन ट्यूनिंग हो जाती है और अल्टीमेटली ओही करन लग जाते हैं।
1: कई बार ये भी तो हो सकता है कि जो बच्चा देखे कि चलो हुण मैं उन्हें बच्चे वर्गा नहीं है जी, छड़ो परे,
0: हाँ जी
1: ते वो जो अपने राह तो भी उतर जाता है,
0: बिल्कुल उतरदा है, मैं हुणे तुहानू जिहड़ी एग्जाम्पल दित्ती।
1: ये दे उही कुछ
0: हाँ
1: हो रहा है।
0: बिल्कुल हो रहा
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जी अज कल जे मापे आ जी हूँ जनरेशन चल रही है, अजकल व्हाट्सएप का इंटरनेट का जमाना है,
0: हाँ जी
1: जेडे हूँ माता पिता ने ये बहुत ओवर बिजी ने,
0: हाँ जी
1: ते पहला वाले भी बिजी सके,
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: अपना चलो कम कार व्यार करते सके,
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: पहला ते हुण च किन्ना जो फर्क तुसीं वेखदे हो।
0: बहुत फर्क है। देखो इन्ना टेक्नोलॉजी एडवांस है, सब कुछ है।
1: जी जी
0: एक तरह नाल देखा जाए तो अगर तुसी सोशल मीडिया से एक्टिव हो तो
1: जी
0: तुहाडा इस तरह टाइम बचता है कि तुहानू जाके नहीं मिलना पैंदा, तुसी
1: जी
0: घरे ही सारयां नू हैलो हाय एक बारी सवेरे करके निबट जांदे हो।
1: वो एक केड़ा वादा
0: हाँ
1: हैगा
0: वो इहदा वादा है जे, इसनू पॉजिटिवली लो।
1: जी जी
0: लेकिन अगर तुसी पिंग होई नाल दी नाल फोन चुकिया, सारे काम छड़ के तुसी मैसेज देखिया फटाफट, नहीं, एक एक चीज़ का टाइम होना चाहिए कि ये टाइम है मेरा,
1: जी जी
0: इस
1: जी
0: टाइम
1: जी
0: जिदा बच्चे स्कूल गए हैं या ट्यूशन गए हैं,
1: बिल्कुल
0: ये मैं हूँ घर के काम तो फ्री है, ये एक घंटा मैं इतने लगा सकती हूँ।
1: जी जी
0: प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तुहानू, तुसी सैट करना है कि तुहाडे लिए प्रायोरिटी की है। जे तुहाडे लिए प्रायोरिटी सोशलाइज करना है,
1: जी
0: मार्केट जाना है, सहेलियां नू मिलना है, तो
1: जी
0: फिर तुसी बच्चियां तो ये एक्सपैक्ट ना करो कि उन्हां लिए पढ़ाई और जो तुसी कहने वो प्रायोरिटी होवे,
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: तुसी
1: जी
0: अपने
1: बिल्कुल
0: बच्चियां दे रोल मॉडल हो, बच्चा जो देखता वही करता।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: जे
1: बिल्कुल
0: तुहाडे लिए हमेशा तुसी उन्हें ये कहने हो नहीं इत्थे तां जाना ही पैना है, नहीं हुणे आए हैं हुण तुसी इन्हां नू अटेंड करो, उन
1: करो
0: वो यही सीखेगा कि पढ़ाई पिछे पाई जा सकती है।
1: जी जी बिल्कुल
0: जे
1: बिल्कुल
0: तुसी
1: जी
0: बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस उन्हां दी पढ़ाई लिए छड़ दे हो, वो सीखेगा कि पढ़ाई ही प्रायोरिटी है।
1: वो स्किपिंग करेगा नहीं थे,
0: हाँ
1: वो कहेगा छड़ो परे,
0: तुसी
1: ये मेरे को लोड़
0: सोचोगे
1: नहीं।
0: कि रिश्तेदार आए अज तू छुट्टी ले लै,
1: हाँ जी हाँ बिल्कुल
0: वो यही सीख
1: हाँ
0: जाएगा कि रिश्तेदारां दे आने ते छुट्टी ले दी है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो पूरी जिंदगी वह फिर एक पार्ट एंड पार्सल बन
0: हाँ
1: जाएगा कि
0: जी
1: वो इंपॉर्टेंट काम छड़ भी सकता
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: और मैनू लगता नहीं कि वो करियर कोई ग्रो करेगा जो जहाँ
0: बिल्कुल
1: बच्चा जो मन च गल आ गई है।
0: बिल्कुल
1: तो आप जी गल करते कि व्हाट्सएप वाली, तो आप बच्चे नू टीवी लैके देता पर टाइम नहीं दिता,
0: हाँ
1: टीवी
0: जी
1: वर्सेस टाइम का एक मुद्दा आता है,
0: हाँ
1: यही
0: जी
1: आप हमने गल भी की
0: हाँ जी
1: है। ये जो आप होर देखिए कि जो 4 मैंबर घर च बैठे आ, पेरेंट्स भी आपस में एक दूजे नू भी वो व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, तो वो भी वो तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है बच्चा जरा है,
0: बिल्कुल होंगे इग्नोर, बिल्कुल
1: ये तो
0: होंगे।
1: कैसे बचाया जा सकता है, कितनी गंभीर गल है।
0: ये बहुत गंभीर गल है, जे तुसी चाहते हो कि बच्चे साडे नाल कनेक्टेड रहन और
1: जी
0: वो ये
1: जी
0: फील भी करन, सिर्फ उपरों उपरों कनेक्टेड नहीं है, तां
1: जी जी जी जी
0: क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बच्चियां नाल बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: क्वालिटी टाइम स्पेंड करन दा मतलब हैगा ये नहीं हैगा कि वो जो भी कर रहा है उस तो तुहाडी नज़र होनी चाहिए है। सपोज वो होमवर्क ही कर रहा है,
1: जी जी
0: तुसी ओहदा कोई सवाल अड़ गया, तुसी उसका
1: बिल्कुल
0: सवाल जड़ा हैगा वो करता, तो की होएगा शायद अगला फेर ना कर सके। तुसी चीज़ इस तरह करनी है कि वो तरीका सीखे और फिर
1: वे
0: वो नाल दे
1: हाँ
0: बाकी भी कर सके,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक
1: बिल्कुल
0: है।
1: फंडा फंडे क्लियर होने
0: फंड
1: चाहिए।
0: एको तुसी कहोगे मैं तो वो होमवर्क ही करता, ये भी क्वालिटी टाइम दिता, उन्हें
1: बिल्कुल
0: वो लर्निंग नहीं हुई।
1: बिल्कुल सगो खोलिया कुछ
0: हाँ वो उन्हें टीचर ने देखना सीगा कि ये बच्चा किन्ना सीख रहा, होमवर्क वो टीचर ले सी
1: जी
0: एक
1: जी
0: एक
1: जी जी
0: स्टैंडर्ड एक पैरामीटर,
1: जी जी
0: तुसी
1: जी
0: वो
1: जी
0: खराब करता,
1: बिल्कुल
0: टीचर ने
1: बिल्कुल
0: भी वो प्रोग्रेस नहीं नोट की। तुसी सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चे नू टाइम देने हैं, मैं इन्हां नू होमवर्क कराना है,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: बच्चे दी भी लर्निंग नहीं हुई,
1: बिल्कुल
0: दिस इज नॉट क्वालिटी टाइम।
1: वो तो बहुत बड़ा लॉस उन्होंने
0: हाँ
1: एक तरह
0: जी
1: से कर दिता है।
0: हाँ।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।